क्या बात है, सेल सेल सेल लग चुकी है। सो प्रोग्राम पे जा भी रहा, लाइए फिर दो बोल, थोड़े करिए माहौल गर्मा गर्म। नहीं तू मेरी खंड मिश्री। लग गया नहीं खड़ा लो।

क्या बात है जी, अखरा च तू दिसदी दलजीत भी कमाल आ बई, कमाल आ। दिसन तो याद आया कि अज बई विजिबिलिटी घट आ, सो गड्डियां ध्यान ना चलाओ, स्पीड कंट्रोल दे विच रखो ते सेफली अपने घरां ते अपने कमां ते पहुंचो। सो तुसी इंजॉय कर रहे हो पंजाबी लहरां खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम ते अपने एक खूबसूरत होस्ट प्रभ संत दे नाल। सो की हाल चाल है दोस्तों, उम्मीद करते हो ठीक ठाक होंगे, चढ़दी कला दे विच होंगे। सो गल्लां मतां चल रही बहुत ही खूबसूरत और तुसी इंजॉय कर रहे होंगे इस खूबसूरत खूबसूरत शाम नूं।

0: Josh Meats Corner at
1: 647-539-4499. बिजनेस नु करो प्रमोट आज ही अपनी एडवर्टाइजमेंट बुक करने लिए कॉल करो प्रभ संधु होरा 437-870-0001
2: देखो जी करता है अपना नंबर बंद पर मेरा दिल करता है अपना कर सारे तो सोना हो
3: बस इनी गल हो कार।

0: सच कहे जे हुंदा।
1: चुल्ले ते पकती रोटी सच्चे,
2: मिट्टी चुगदी फसल सच्चे,
1: गुरु दी पाणी सच्चे, सतगुर प्यारे सच्चे दी बाह फड़दे हुंदे ने।

सतगुरु होए दयाल तसरदा पूरी है, सतगुरु होए दयाल नकब हूँ झूरी है, सतगुरु होए दयाल त दुख ना जानिए, सतगुरु होए दयाल त हर रंग माणिए। अकाल पुरख के दिते हुए सारे रंगों माणते हुए जुड़ चुके हैं जी एक बार फिर एक खूबसूरत शाम, खूबसूरत स्रोते के लिए खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम, रेडियो उडान जिंदगी जिंदाबाद ते चढ़दी कला की पहचान, रेडियो उडान प्रभ संधु दे नाल।

0: अजकल किसी भी चीज ची वैल्यू नहीं मिलती, साड़ियां आइलां विच वैल्यू मिलूगी।
1: ओ किदा
0: जिथे तुसी सिर्फ 22.49 विच हेलमंस मेयोनीज 4 लीटर क्लब पैक खरीदो ते 3000 पीसी ऑप्टिमम पॉइंट्स हासिल करो।
1: और पीसी ऑप्टिमम है पर बिजनेस मेंबरशिप फीस
2: बिल्कुल जीरो।
3: तुसी हो कौन?
0: होलसेल क्लब जिथे फूड सर्विस मिले वैल्यू नाल। और जानकारी लई स्टोर विच वेखो पीसी।

वर्गी ठंडिया मिठिया छावा वर्गी मां बोली है मावा वर्गी ठंडिया मिठिया छावा वर्गी बाल पुने दे चावा वर्गी ते सजन दिया खुलिया बावा वर्गी खुलिया डुलिया थावा वर्गी मेरे पिंड नू जांदे रावा वर्गी आओ इसकी शान वधाइए एदे सोले रल भी लगाइए क्योंकि बोली अपनी ते सानू माण होना चाहिदा है बंदा जदों बोले तां पछाण होना चाहिदा है अपनी पछाण वाला दीवा ना बजा दियो वेखियो पंजाबी ओ पंजाबी ना भला दियो वेखियो पंजाबी ओ पंजाबी ना भला दियो।

0: 8586-9257।
1: पिछले 18 सालों तो मॉर्गेज दिया सेवामा धंधे आ रहे अकाल मॉर्गेजेस इंक नाल कम कर दे। दविंदर पवार
0: फर्स्ट सेकंड थर्ड मॉर्गेज होम इक्विटी बिजनेस लोन डेट कंसोलिडेशन रीफाइनेंस रेंट टू ओनली कॉल करो दविंदर पवार 6479888731 647-988-7831।
1: जे नहीं होना खज्जल खुआर ता कॉल करो
0: दविंदर पवार।
1: जेकर एक बार इन तुहाडी फाइल वेख के हां कह देती ता अपने वादे ते हमेशा खरे उतर देहान। लाइसेंस नंबर 10845 इंडिपेंडेंटली ओन्ड एंड ऑपरेटेड।
2: ट्रक एक्सीडेंट ते रब ने हाथ दे के बचा लिया
3: ते कार दे खर्चियां नु हरजीत जंजुआ दी डिसेबिलिटी इंश्योरेंस ने संभालिया। अपने भविष्य नु सुरक्षा करन ते प्रेजेंट दे पीस ऑफ माइंड ली आज ही संपर्क करो हरजीत सिंह जंजुआ।
4: हर तरह दी वधिया इंश्योरेंस पॉलिसी ले याद रखो इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट हरजीत जंजुआ दा नाम। लाइफ इंश्योरेंस डिसेबिलिटी क्रिटिकल इंश्योरेंस सुपर वीजा इंश्योरेंस विजिटर इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस किड्स प्लान आरआरएसपी आरईएसपी टीएफएसए कॉल करो
3: 6478 5294।
5: स्टीफन फर्नीचर की धमाकेदार फेस्टिवल सीजन सेल। इस साल फेस्टिवल सीजन में अपने घर को भी जरूर सजाइए। अपने मनपसंद बेस्ट क्वालिटी हाई एंड ब्रांडेड फर्नीचर पे कोई भी रीजनेबल ऑफर एक्सेप्टेबल होगा तो फिर आज ही स्टीफन फर्नीचर आए और अपने घर को स्टीफन फर्नीचर के बड़े बड़े ब्रांडेड फर्नीचर पे बड़ी बड़ी डील्स का फायदा जरूर उठाएं। सर्विंग सिंस 1992 फाइनेंसिंग ऑप्शन अवेलेबल। टू लोकेशंस टू सर्व यू 2575 स्टील एवेन्यू ईस्ट ब्रैम्पटन 9057900560 6 मार्कोनी कोड बोल्टन 9059519394। स्टीफन फर्नीचर के

0: जी हाँ दोस्तों, तुसी हुण जुड़े हुए हो सजरी सवेर विद शंभी पठल दे नाल ते साडे नाल आ चुके ने अकाल मोर्गे दे प्रिंसिपल ब्रोकर रशमीत कौर जी। मोर्गे बाबत कोई भी सलाह मशवरा करना चाहते हो तां रशमीत जी होरां दे नाल सही जेन्युइन एडवाइस वास्ते तुसी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नंबर है जी 6475394499 6475394499। रशमीत कौर जी वेलकम जी, आई नो वेरी गुड मॉर्निंग जी।
1: ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ਮੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਰਸ਼ਮੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ।
0: ਜੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਰਸ਼ਮੀ ਜੀ।

0: एक्सपर्ट?
1: हाँ हाँ एक्सपर्ट हैं, एक्सपीरियंस्ड एंड अप्रोचेबल ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, लीड जनरेशन सिस्टम, पैसिव इनकम प्रोग्राम फॉर रियल्टर्स, फ्री एडमिन सपोर्ट, हायरिंग फुल टाइम एंड पार्ट टाइम रियल्टर्स, कॉल 416-823-9505 और विजिट summitrealtyexperts.com. Summit Realty Expert.
2: भाई साहब जिंदगी दा कोई भरोसा नहीं, इस करके हाथ दे विच इंश्योरेंस पॉलिसी होनी बहुत जरूरी है।
3: ता इस लई आज ही हरप्रीत सैनी नु मिलो। इना कोल ने स्पेशल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स विद इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। तुहानू सिर्फ 10 साल या 20 साल लई पे करन दी लोड है ते इन्ने नाल ही तुसी पूरी लाइफ कवर्ड।

0: एक्सपर्ट।
1: हाँ हाँ एक्सपर्ट हैं, एक्सपीरियंस्ड एंड अप्रोचेबल ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, लीड जनरेशन सिस्टम, पैसिव इनकम प्रोग्राम फॉर रियल्टर्स, फ्री एडमिन सपोर्ट, हायरिंग फुल टाइम एंड पार्ट टाइम रियल्टर्स। कॉल 416-823-9505 और विजिट summitrealtyexperts.com। समिट रियल्टी एक्सपर्ट।
2: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
3: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
2: वाह यार नंबर ता दई मोना जी दा।
3: हां जी तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
4: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी,
3: जेड़े लाइफ इंश्योरेंस,

0: एक्सपर्ट।
1: हाँ हाँ एक्सपर्ट हैं, एक्सपीरियंस्ड एंड अप्रोचेबल ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, लीड जनरेशन सिस्टम, पैसिव इनकम प्रोग्राम फॉर रियल्टर्स, फ्री एडमिन सपोर्ट, हायरिंग फुल टाइम एंड पार्ट टाइम रियल्टर्स। कॉल 416-823-9505 और विजिट

0: Sofamart, 24 Regan Road, Brampton. ज्यादा जानकारी ले कॉल करो परंजीत होरानु 905-803-8056 905-803-8056।
1: ओ यार बिजनेस का माड़ा हाल होया पे, कितनी तरकीबा लगा चुका पर फिर भी कोई गल नहीं बन रही।
2: निर्बल बाबे ने क्या से कृपा हो जाओगी, नींबू मिर्चा टंगो पर कृपा तो हो ही नहीं।
3: ऑनलाइन भी मार्केटिंग करके देख ले पर कोई रिजल्ट ही नहीं आया।
4: एदा मतलब तुसी रेडियो आवाज ट्राई नहीं कीता।
5: रेडियो आवाज,
6: रेडियो आवाज रोजाना सवेरे 9 to 10 बजे तक, एवरी सैटरडे 10 to 1 बजे तक प्राइम टाइम ते। वधेरे जानकारी लई तुसी कॉल कर सकते हो 416-518-3200।

0: जी हां मोटर कार का तो मालूम नहीं लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुंचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज वो रेजिडेंशियल हो कमर्शियल हो प्राइवेट हो फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर मयंक भटनागर जी 647-702-2023
1: License number 10394.
2: Assi karde ha fikar, tusi raho befikar, tusi jiyo befikar. Ki gal bhai ji, enne befikar ta tusi mainu kade nazar nahi aaye. Raaz ki hai. Befikar hon da eh raaz mainu ditta hai Jaswinder Kaur Taggar di insurance policies ne. Sadi life insurance, truck drivers layi disability te critical illness de change plans. Sadi parents layi super visa insurance, te bachya layi RESP. Tusi vi raho befikar, te call karo Jaswinder Kaur Taggar nu. 647-765-2340 647-765-2340
3: You're listening to Guntas Radio on AM 530 from 10 to 11 a.m. Monday to Friday with Jazz Tagar, your favorite show.

0: One-stop solution for all your mortgage needs. Bank declined. Mortgage for self-employed. Quick closing in 48 hours. Or commercial loan. Just don't worry. 647-512-7000. Mortgage broker Mukesh Chauhan from Mortgage Diligent. FSRA number 10252. Conditions apply.
1: Don't worry. Mukesh Chauhan hai.
2: यारों के साथ टशन या फैमिली के साथ करना हो जशन, ढाबा ऑन द फॉल्स आए, टेस्ट का वादा और चॉइस भी ज्यादा।
3: दिल्ली वाला बटर चिकन, रोगन जोश, सोया चाम, बेस्ट वेज नॉन वेज बिरयानी इन द टाउन, बेस्ट वेज नॉन वेज एपेटाइजर या माउथ वाटरिंग मेन कोर्स खाना हो तो सीधा चले आए ढाबा ऑन फॉल्स, द बेस्ट फूड इन नायग्रा फॉल्स। LLBO एंड बियर ऑन टैप ऑल्सो अवेलेबल, वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम द फॉल्स, फ्री पार्किंग। विजिट 5039 सेंटर स्ट्रीट नायग्रा फॉल्स, कॉल 9053580864
2: 9053580864 Dhaba on the Falls.

0: Wow, Mom. Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effect of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी कस्टडी किस नु मिलेगी ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहनगे
4: S&S Lawyers को इन्ना सारे सवालां दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है अपने हक जानन लई या सलाह लैण लई आज ही S&S Lawyers नु कॉल करो 416-655-2000

0: आप भी अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ जरूर आएं। वेज थाली, चना भटूरा, अमृतसरी कुलचे का स्वाद बाय वन गेट वन ऑफर के साथ जरूर उठाएं। फ्रॉम 10 AM टू 8 PM सिंपली इंडियन स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट सर्विंग यू फ्रॉम 3 लोकेशन 15 फेंडर वे 85 मॉन्टपेलियर स्ट्रीट 275 गार्डन ब्रूक ट्रेल इन ब्रैम्पटन।
1: क्या बात है, सिंपली इंडिया से जरूर तुसी गेड़ा मार के आओ। बहुत वधिया क्वालिटी फूड ते नाल डील दी डील तो सुन रही, बाय वन गेट वन फ्री, क्या बात है, सिंपल इंडियन स्वीट। सो गलबात थोड़ी साड़ी हो रही है, अगेन मैं नंबर दे दवा स्टूडियो का जरूर, जी सद के कॉल करो ते तुसी अपना अपना ओपिनियन साडे नाल शेयर कर रहे हो। नंबर है अपना 9056733337905673333, फोन नंबर है 9056733337। एक थोनों अक्सर ही इन्फॉर्मेशन देने हुए फाइव रिवर्स डक क्लीनिंग दी, क्योंकि हुण नैक्सट वीक मौसम बड़ा गर्मा गर्म है, सो हो जाओ रेडी ते तुसी डक क्लीनिंग करा लो एसी चलाउण तो पहला पहला। इन्हां कोल वीकेंड ते कुछ स्लॉट्स अवेलेबल ने, मुंडे यंग ने, मेहनती ने, बहुत कहिंदे ना कि लगन नाल